बढ़ के एक खिलाड़ी, लाल कुल्हाड़ी काली पहाड़ी, मोटा सेठ लोहे का गेट, हो गई भोर भागा चोर, नाचा मोर मच गया शोर।

0: भाई मुखड़ा कम्प्लीट हो गया था, लेकिन कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है।
1: अरे मोनू, लड़की लोग का नाटक तेरे को क्या मालूम, बहुत पापड़ मिलने पड़ते हैं यार।
0: ये पापड़ का प्यार से क्या ताल्लुक यार?
1: अरे कहावत है यार,
0: अरे कहावत गई तेल बेचने। तू क्या भाव खा रही है, मैं पीछे आ रहा हूँ तू आगे जा रही है, देख तेरा बहुत हो गया बहुत हो गया। अभी चल, अभी थोड़ा अपना कम कर माँ, माँ बोले तो मेरे होने वाले बच्चों

0: एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित दूषण पर प्रधान हो तो काकचेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।